0: ये रातंग मेसल में रंगुने न्यूज़ क्या ब्रेम जी क्यों चाहिए आ रंगों से यूरिंग लूटे ने ये लाच चेच हो
1: चिकन चला शॉप चियो चेन आज जिम चिकन दा ता ता जी चिकन चला
2: 最最穷是你那组国家一个三万张姐姐呢了西马多你也让世界也最新江城了我就听你过的是我恐怕其次这个巧了点钱不穷哎啊这心里我在这外面
3: 都是那些酒水，那是。那这下倒马上，你来两气。可接不？怎么说？你阿姐让你这些叫把用米。 我打程志远抢起个月的准备，可是呢，俺身后不靠下，一年，俺一年都垫的用嘛的。现在程志远跟俺若不切结，你这就别想切不得。
1: 您这开业姐，若不切不得。
3: 第一了，你最忙不是拿钱，你也跟着这些给我们羡慕嗦。一年，俺打程志远，我那钱是准备给不赢，这顿开开心没？
1: 上次都没呢，这月给怎么讲没有出马的？你最近太缺损了，
3: 你让啥程志远打卡卡去领你？
1: 可对，不过就给不得。我天仙妹，张马驹。 严小晨，俺年纪在我源头民多，也给你面对兄妹，
3: 爹面对兄弟也开心。

दूसरे चांस के ऊपर दूसरे चांस के ऊपर कैसा मैंने पा ला अच्छा क्यों था जो मुझे वाले तेरी सा चांस आ जा शेर शेर राही ना और हर कमेंट ने तो ना मालूम है

0: तो मिन करता हुई ना सन को मसो
1: ये दें दी आउ दू
0: सिमो जा छुसे गाने यो आ सबो 零零零零零这是单看这朵，零零零的啊，零卡的大回音。
2: 喂，天柱。
0: 何西，阿家有没？
1: 阿家有没？
2: 上看没？那是你过来这朵啊？
1: 你读书结果了没？你莫搞死个！
0: 我来读书结束。阿家，我你家段子名三代啊，这朵，你写人了，卡拉他才来不着啊？阿家，爹爹的。
2: 张卡来叔叔啊？
0: 是天津嘛的？阿家，你爹名是朱自己三代的。
1: 喂喂，咱该去嘛到？现在的个你也大名的，嘿
0: 嘿。叔哥，明天咱也大吧？恰恰呢，老个青年的呀，哪儿的？阿姐，大伯堂哥的个墩子大名呢，你肯定去。墩子点点，点么堂哥用谁？记得的。
2: 可真没事的。林天柱，
0: 阿姐。要懂啊，俺能谢谢，能提高些。

0: उन्हें हिंसा चेस।
1: आई आज कर रही लगा।
0: रानियल मिसुंदा।
1: कैसी नहीं बा?
0: अच्छी, नियल सुंदा जी।
1: आई शेना मुकुए आ।